0: शाओमी वा रेडमी को फोन किन्दा उपहार नै उपहार यो दशैं तिहारमा शाओमी वा रेडमी
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बिहानको 9 बज्यो।

0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
1: रेडियो नेपाल हो। अब सुन्नुहोस् सृजना खत्री हाउडे मायाको आवाजमा नौटंकी माया।